समय सापेक्ष प्रसंग, फरक दिन फरक विषय, समय सन्दर्भ, हरेक दिन बिहान 7:30 बजे मात्र रेडियो सफलता 103.4 मेगाहर्जमा समय सन्दर्भ, समय सापेक्ष प्रसंग, फरक दिन फरक विषय, समय सन्दर्भ, हरेक दिन बिहान 7:30 बजे मात्र रेडियो सफलता 103.4 मेगाहर्जमा समय सन्दर्भ।

0: प्रिंटिंग छपाई संबंधी सबै काम अब एकै ठाउँ ओम प्रिंट हाउस। प्रिंट हाउस। प्रिंट हाउस। ओम कंप्यूटर डिजाइनिंग एंड एडवर्टाइजिंग हाउस पोखरा 8 सिर्जना चोक में हमारा सेवाहरू विविध कार्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रचार प्रसार का लागि फ्लैक्स प्रिंट 2D 3D बोर्ड तथा बैनर प्रिंट माया को चिन्ह उपहार तथा विवाह वर्तबन्ध लगायत सबै खाले उत्सव तथा कार्यक्रम को कार्ड छपाई ग्राफिक डिजाइन कलर प्रिंट तथा फोटोकपी स्टिकर कप प्रिंट टी शर्ट प्रिंट लगायत छपाई सम्बन्धी सबै काम तुरुन्तै सम्पर्क ओम प्रिंट हाउस पोखरा 8 सिर्जना चोक फोन नम्बर 061-576-110 प्रोप्राइटर मनोज बास्तोला 98-560-2225 98-560-26-110
1: भोलि घरमा पूजा छ पूजाका सामग्री केही लिन जान पाएको छैन फेरि महेन्द्र पुल जानु पर्ने होला यो बुढीलाई केही चिन्तै छैन भने
2: हैन के भन्छन् यी बुढा किन महेन्द्र पुल नै जानु पर्यो भने त्यति सामान लिनको लागि अहिले त 0 किलोमिटरमा विद्युतीय राइस मिल भएको घरमा पामी पुजारी पूजा सामग्री भण्डार छँदैछ नि
1: ए हो र ल त्यसो भए म ढुक्क भएँ ल
3: हजुर हामी कहाँ सत्यनारायण रुद्री व्रतबन्ध विवाह चौरासी सप्ताह एकहा लगायत जुनसुकै कार्यका लागि सम्पूर्ण किसिमका पूजा सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै विभिन्न पूजा आजा कर्मकाण्ड गराइने र आवश्यक परामर्श समेत दिइनेछ
1: सम्पर्क पामे पुजारी पूजा सामग्री भण्डार एन्ड कोल्ड स्टोर 0 किलोमिटर 5 पोखरा प्रोप्राइटर पण्डित घनश्याम अधिकारी गुरु र लक्ष्मी अधिकारी मोबाइल नम्बर 98460-54635 98464-43853